0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम आ, जो समझाए उसी की मची धूम।
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम। बाजू